0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वेलकम बैक इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। सेल्फ वर्थ यानी हमारी खुद की अहमियत। यू नो, हम अक्सर अपनी कीमत को दूसरों के सर्टिफिकेट्स में ढूंढते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे, कोई हमें वैलिडेट कर दे, लेकिन सच तो ये है कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को आईने में देखकर खुद से कितना प्यार करते हैं। जब आप अपनी अहमियत को समझते हैं ना, तभी दूसरे आपकी वैल्यू को समझ पाते हैं। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि दूसरों की कसौटियों पर कब तक खुद को परखोगे। आज थोड़ा सा वक्त खुद की तारीफ के नाम कर दो। जिंदगी बेहद खूबसूरत है और तुम उससे भी ज्यादा। इस नए दिन का पूरे दिल से इस्तकबाल कर दो। तो चलिए इस्तकबाल कीजिए अपने इस दिन का, अपनी जिंदगी का, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

अगर मैं कहूँ कि आज के डेट में सबसे मुश्किल क्या है तो आप क्या कहेंगे? काम करना, बाहर निकलना? नहीं, आज के डेट में सबसे मुश्किल है अपने बच्चों की परवरिश करना, और ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि वो इस मॉडर्न दुनिया में आगे बढ़ें, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति को कभी ना भूलें। लेकिन बच्चों को नसीहतों से ज्यादा आपके हमारे वक्त की जरूरत होती है, तो अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम कीजिए और उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलिए, या बस उनके बचपन के किस्से सुनिए, और उससे भी इंटरेस्टिंग अपने बचपन के किस्से उन्हें सुनाइए। आप कैसे थे, आप क्या करते थे, आपकी शरारतें कैसी होती थी, आपके गेम्स कौन से होते थे। आप चाहते हैं ना वो आपकी संस्कृति से जुड़े, आपके कल्चर से जुड़े, तो उन्हें खुद के बचपन से जोड़िए, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जो बड़े होकर उनके लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ, इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपके साथ है सताक्षी। बात करूंगी उनसे जो अपने देश से दूर हैं, इस वक्त ब्रिस्बेन में रह रहे हैं। जब हम कहीं बाहर आकर अपनी गृहस्थी बसाते हैं तो हमारे पास वो बड़ा सा भरा पूरा परिवार नहीं होता जो हमारे देश में होता है, है ना। दूसरी जगह हम बहुत होता है तो हमारे पार्टनर के साथ, हमारे बच्चों के साथ आते हैं। ऐसे में रिश्तों का ताना बाना और नाजुक हो जाता है। अक्सर रोजमर्रा के कामों में, बच्चों के स्कूल, ग्रॉसरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच हम अपने पार्टनर से बात तो करते हैं, लेकिन कम्युनिकेट करना, उससे कनेक्शन बैठाना हम भूल जाते हैं। हमारी बातें सिर्फ टू डू लिस्ट बनकर रह जाती हैं। याद रखिए कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को सच में सुनने और समझने से गहरे होते हैं। तो आज जब आप आपके पार्टनर से बात करें, या आप घर वापस आएं, या आपका पार्टनर काम से वापस आए और जब आप साथ बैठें, तो सिर्फ काम की बातें मत कीजिएगा। उनसे पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये नई जगह उन्हें कैसी लग रही है, यहाँ पर वो ठीक से सेटल हो पाए हैं कि नहीं। आपका एक छोटा सा थैंक यू, आपकी एक छोटी सी केयर या की गई अपनी तरफ से कोई बात, एक जादू की झप्पी बरसों की थकान मिटा देती है। इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखिए और साथ साथ जीते रहिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

फासले तो शहरों के होते हैं दिलों के नहीं, बातें होती रहें तो दूरियां कभी घर नहीं करती, बातें होती रहें तो दूरियां कभी घर नहीं करती। जी हाँ, जहां बातें बंद हो जाती हैं सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों की गर्माहट बनी रहे, आपके रिश्ते सांस लेते रहें और जिंदगी में आप उनके साथ खुश रहें, तो एक दूसरे से बात करते रहिए। मैं तो कहती हूँ ना, हमेशा थोड़ी बहुत नोकझोंक ही कीजिए, लेकिन बात जरूर कीजिए, क्योंकि बातें ही हैं जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालती हैं। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एफएम पर।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
4: Some
3: है।
4: Numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Happens, जी हाँ, सताक्षी के साथ इसी सफर को आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर और मेरे साथ सुन रहे हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त गाने। और ये वो गाने हैं जो मैं तो यहाँ से प्ले कर रही हूँ, आप में से कुछ लिसनर्स को पसंद आ रहे होंगे और कुछ को नहीं आ रहे होंगे, है ना। मतलब सबका मूड अलग अलग होता है, सबकी च्वाइस अलग अलग होती है और जरूरी नहीं है कि रेडियो स्टेशन पर जो भी गाना प्ले हो वो सबको अच्छा लगे। और ये चीज ना लाइफ के हमें बहुत एक अच्छी चीज सिखाती है, लाइफ में हमारी जो कुछ भी हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे, या आप जो कुछ कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगे। अब आपने एक डिश बनाई घर में परिवार में, सबको जरूरी नहीं है कि वो अच्छी लगे। इस बात पर हम कई बार नाराज हो जाते हैं कि यार हमने तो इतनी मेहनत की लेकिन सामने वाला कह रहा है कि उसे अच्छी नहीं लगी और कोई ये भी कह रहा है कि उसे अच्छी लगी। तो भाई सबका मूड अलग अलग होता है, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। और अगर आप सबके मूड के हिसाब से अपने मूड को सेट करना शुरू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। तो हाँ, आप जब भी लाइफ में कुछ करें, चाहे खाना बनाएं या कोई काम करें, आप हमेशा ये याद रखिए कि आपका किया गया एफर्ट किसी को बहुत अच्छा लग सकता है और किसी को हो सकता है कि वो टेस्टलेस लगे। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ इसी बात पर, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

तो फ्रेंड्स, ये आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ एक और साथ था, और आई रियली होप कि आपने भी आज के साथ को मेरे साथ एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, और कल कुछ और गहरी बातें होंगी, हमारा आपका साथ कल फिर से आगे चलेगा, लेकिन अब आज इस सफर से, इस साथ से इजाजत लेने का वक्त है। सो चलिए, आज जा रही हूं, लेकिन कल जरूर मिलूंगी आपसे। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, नमस्कार।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101 एम ते जीआर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। बहुत होगी बॉलीवुड की गल, थोड़ी हॉलीवुड वाल भी नजर मार लेने जी। हाँ, क्योंकि जी मैं हमेशा कहनी हुनी है ना कि मैं सिर्फ बॉलीवुड बारे नहीं पूरी दुनिया बारे गल करनी हैगी है। तो जेड़ा तीसरे नंबर ते जेड़ी सीरीज दी मैं गल कर रही हूं वह बाहर की ही हैगी है, इंडियन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाम है जी उसका ब्रिज सीजन 1। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਜ਼ਨ 1।
1: On it.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning in रेडियो ब्रिसवानी, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से. To everyone tuning in to रेडियो ब्रिसवानी, this is शाहरुख खान.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई अप्स के साथ। फोर्टिस मैदान

0: sensitive to unorganized, unreliable home helpers. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omzorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमजोर्ग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमजोर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omzorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमजोर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हो तो गया है इवनिंग वाइब मेरा सवाल, कैसे हो आप, कैसा रहा आपका, अच्छा फील कर रहे हो आप काम। वरी, ये सारी चीजों से निजात दिलाने हम यहाँ पर आ गए हैं आपके सामने, और ये प्रोग्राम आपको मजे करवाता है, गाने सुनाता है, एंटरटेन करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। एंड दैट इज व्हाट मेक बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा एक हेल्दी रिचुअल के साथ, एक ऐसा हेल्दी रिचुअल जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है मेंटली फिजिकली हेल्दी रखने के लिए हमें, और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। नाउ आई ऑलवेज से, और सिर्फ मेरी नहीं, आप अगर किसी वेलबींग गुरु की बात माने जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको बताते हैं या फिर कोई ज्ञान आपको देते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। तो आइए क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इसी के साथ अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से जबरदस्त से गाने के साथ। और ये गाना है फ्रॉम द मूवी अल्फा, और इसमें है आलिया भट्ट और शर्वरी बाग, और साथ में है बॉबी देओल, और इसमें बड़े ही हॉट मूव्स जो है वो करती हुई आपको नजर आएंगी आलिया भट्ट और शर्वरी बाग। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको ऑलरेडी पता होगा किस बारे में बात हो रही है, नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिए। और या मस्क, जी हाँ, गाने का नाम है, क्या जबरदस्त गाना है, सुनते हैं इसको, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और फिर गपशप करेंगे और बहुत सारी।

gonna die.

गाने ना आपको इतना मजे की दुनिया में ले जाते हैं, ये गाना उनमें से एक है। मतलब क्या गाया है और किस खूबसूरती से गाया है। मतलब लफ्जों की बात करूँ तो उसके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बट कॉम्पोजिशन से लेकर गायकी सब एकदम लाजवाब है, क्या कहने। और अगर आपको नहीं पता है तो ये रवि शेरगिल ने गाया है और गाने का नाम है तेरे बिन। जी हाँ, तेरे बिन। इसी के साथ चलिए अब चलते हैं सीधा मौसम की ओर, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और अब सबसे पहले मौसम के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि मौसम के बारे में बात करते हैं फिर हम आपको बताते हैं कि कैसी अंगड़ाई मौसम लेने वाला है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आप मौसम के हिसाब से प्लानिंग नहीं करते हो तो हमारे प्लान्स जो हैं वो चौपट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मौसम, एंड ये कई बार होता है। सो वो ना हो इसी के लिए हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले आज की बात करते हैं। जी हाँ, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, और अगर बात की जाए अभी की तो 22.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील आपको हो रहा है 20.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये तो थी दिन की बात, रात की अगर बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे और चांसेस ऑफ बारिश ना नल। और मजेदार सी ये जो धूप आपको आज मिली है इसका आनंद आपने आई होप उठाया हो, क्योंकि एकदम चमकता हुआ सूरज विदाउट बादल विदाउट बारिश कितना खूबसूरत लगता है, सर्दियों का ये खूबसूरत सा सूरज, राइट। तो एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और मंडे के बाद ट्यूसडे को भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, बट भर भर के सूरज की किरणें आपको मिलने वाली हैं। वेडनेसडे को भी ऐसा ही रहेगा विद 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद मुझे बीच बीच में थोड़े बादल आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आज कल और परसों यानी कि अगले दो दिन तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, तो आप उसको एंजॉय कीजिए अगले दो दिन की, और उसके बाद के दिनों की बात हम बाद में करेंगे। पहले आप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से मौसम को, क्योंकि सर्दियों की धूप अगर मिलती रहे तो फिर लिटरली हम जादू की तरह हो जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है जादू कौन है तो कोई मिल गया देखिए, जी हाँ आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना, खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन।
12: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। शो की जबरदस्ती शुरुआत हो गई है, गाने एकदम मधुर मधुर से आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं एंड आई होप आप इन्हें पसंद कर रहे हो। और चलिए, अगर नहीं भी पसंद कर रहे तो अपनी पसंद के गाने आप ले आइए। जी हाँ, मतलब वही है जो आप सोच रहे हो, आप अपनी फरमाइशें ले आइए और हम उन्हें प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। जी हाँ, ये टू वे है, मतलब सिर्फ हम ही आपके लिए गाने नहीं प्ले करते बल्कि आप अपने फेवरेट, अपने अजीज गाने खुद भी फरमाइश कर सकते हो और हम उन्हें आपके लिए प्ले करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपना फोन उठाना है, एक नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

गेस कीजिए कि आप एक कैफे में खाना खाने गए हैं। जी हाँ, आप एक कैफे में खाना खाने गए हैं। आप अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मस्ती में हैं, और बाजू में आपकी नजर पड़ती है और आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा देखा देखा लग रहा है। जी हाँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हो और थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हो, और फिर आपको रियलाइज होता है कि ओ, इस बंदे को तो हमने स्पाइडरमैन मूवी में देखा है। या ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड की बात मैं कर रही हूँ। वेल, ऐसा ही लगा बहुत सारे लोगों को जब मुंबई के एक कैफे में टॉम हॉलैंड को चाय पीते हुए देखा लोगों ने। जी हाँ, पहले लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, बात तो सही है, बंदा तो वही है, स्पाइडरमैन, या स्पाइडरमैन है अपना ये बीड़ू। जी हाँ, सो टॉम हॉलैंड वहां पर अकेले नहीं थे, वहां पर मैट डेमन भी थे और साथ में थे क्रिस्टोफर नोलन। जी हाँ, और इनफैक्ट आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूँ। जिस कैफे में वो गए हुए थे, लोगों को तो पता था या नहीं पता था वो एक बात थी, लेकिन कैफे का जो मैनेजर था उसको भी नहीं पता था। जी हाँ, वो उनको कोई आइडिया नहीं था कि जो कस्टमर हैं वो हॉलीवुड के लेजेंड्स बैठे हुए हैं, लाइक लिटरली टेबल पे लेजेंड्स बैठे हुए हैं। आप लोग बोलोगे कि वाह निव्या वाह, मतलब सच में हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मजा आ जाए। वेल, अगर आप भी ऐसे फैन हो और स्टारस्ट्रक हो जाते तो डेफिनेटली होगा, पर जो लोग नहीं होते उनके होगा कि हाँ ठीक है, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, मतलब वो भी मस्ती करने, मजे करने, खाने पीने आते हैं, उसमें क्या ही बड़ी बात होगी। बट देर आर मेनी पीपल जो कि लिटरली बहुत ही गजब के फैन होते हैं। अब ये जो कैफे था वो था मुंबई का लेपोल्ड कैफे, जहां पर ये तीनों आए हुए थे मजे से बन मस्का खाने, चाय पीने और डिफरेंट डिफरेंट डेलिकेसीज को ट्राई करने, क्योंकि ये तीनों ही पहुंचे थे मुंबई में अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए। जी हाँ, और आपको पता है मैं कौन सी मूवी के बारे में बात कर रही हूँ? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन जो कि आने वाली है। वेल या, टॉम हॉलैंड के लिए तो एक और रीजन है, क्योंकि उनकी तो एक और मूवी आने वाली है, लेकिन उसको आने में अभी वक्त है। जी हाँ, 20 दिन बाकी है, लेकिन जिस मूवी के लिए वो अभी यहां पर आए हुए थे, यानी कि मुंबई पहुंचे हुए थे, वो थी उनकी मूवी द ओडिसी, जो कि रिलीज हो गई है कुछ जगहों पर। इसकी जो अर्ली स्क्रीनिंग थी उसके बारे में लोगों ने एक ही गजब की बात कही है, और वो कहा है कि क्रिस्टोफर नोलन से अच्छा मैजिक क्रिएट कोई कर ही नहीं सकता ऑन स्क्रीन, लाइक लिटरली ही इज अ मैजिशियन। एंड इफ यू डोंट नो वो कौन है जिनके इतनी बात की जा रही है, वेल, क्रिस्टोफर नोलन वही है जिन्होंने इंटरस्टेलर बनाई है, जिन्होंने ओपनहाइमर बनाई है, जी हाँ, इंसेप्शन बनाई है, ये सारी की सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई है। एंड अब वो बनाकर आए हैं द ओडिसी, एक ऐसी कहानी जो कि ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। जी हाँ, एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, यू विल नो व्हाट इज This wonderful thing. जी हाँ, सो मैट डेमन और क्रिस्टोफर नोलन और टॉम हॉलैंड तो चाय की चुस्कियां लेते हुए मजे कर रहे थे। मैं कहती हूँ कि आप भी अपना द ओडिसी की प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं तो इस वीकेंड देखने जाने वाली हूँ। आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मूवी फॉर सो लॉन्ग। जब ये अनाउंस हुई थी, इसकी कास्टिंग हुई थी, आई वॉज एक्साइटेड। एंड इसका ट्रेलर इतना गजब का लग रहा है, जिन लोगों ने देख ली है अर्ली स्क्रीनिंग्स में, वो कह रहे हैं कि अगर इंटरस्टेलर के बाद किसी मूवी ने इतना इमोशन किया है, सब कुछ एकदम गजब का जिस मूवी में रहा है, तो वो यही है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ क्रिस्टोफर नोलन मूवी। सो या, गेट रेडी फॉर इट, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Vadere kifayati rihayat di shuruaat vadere karan di uplabdhta naal hundi hai. Ise layi navi Queensland sarkar soobe bhar vich 98,000 ton vi vadh nave karan de nirman da raah khol rahi hai. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: Samsung ki mala pe sim room hai.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ कल ही की बात है, मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और मैं देखती हूँ एक डॉग की पिक्चर, जो कि एक रील बेसिकली मैं देखती हूँ, उसमें एक डॉगी बैठा हुआ है और वो बड़े ही अच्छे से साइड आई दिखा रहा है, लेकिन वो मीम है तो उस पर कुछ लिखा भी हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है। जी ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है जहां चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। और साथ में लिखा हुआ था नीचे, ओशो का भाई पौने 200। जी हाँ, and I was like, wow, मतलब literally, अब आपको तो पता ही है ओशो कौन है, मतलब उन्होंने बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान जो है दिया है, लेकिन कभी कभी अगर आप उनकी बातें सुनोगे ना, आपको लगेगा रियलिटी तो यही है, मतलब रियलिटी तो ओशो ने ही बोली है हमेशा, जिस दैट हमारी दुनिया जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है वो रियलिटी, और कभी कभी उनको जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे मान लिया जाता है कि वो कुछ भी बोलते हैं, बट अगर आप उनकी बातें सुनोगे देन यू विल बी लाइक वाह, मतलब या विजडम यही है. सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिखा हुआ था, डॉगी जो है वो ओशो का भाई पोने 200 वाली सिचुएशन में बैठा हुआ था, मतलब ओशो विजडम देते हैं, यहाँ पे पोने 200 भी आपको विजडम दे रहा है, और वो कह रहा है कि सिर्फ शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है जहां चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है. बात तो सही है भाई, हल्दी लगाती है, लगाई जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो मस्त तरीके से आपकी शादी की जाती है, और वो चोट है या क्या है, ये मरहम है, ये तो भाई डिपेंड करता है बंदे बंदे पर और उनकी लाइफ पर, कपल्स कपल्स पे. कुछ के लिए शादी तो बहुत ही मजेदार चीज है, और कुछ के लिए तो वो है थोड़ी दुर्घटना टाइप ही. मतलब देंगे इसकी मीम्स जो बनते हैं ना शादी पे, वो बड़े ही खतरनाक होते हैं. मतलब शादी अगर इतनी खतरनाक चीज है तो लोग करते क्यों हैं? जब आप उनसे ये पूछते हो तो वो कहते हैं कि लड्डू है भाई, खाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, नहीं खाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, तो खा ही लेते हैं. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये है एक फरमाइशी गीत, फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से. गाने का नाम है दिल लेके, और ये गाना है वांटेड मूवी का, दिल लेके दर्द दिल दे गए. जी हाँ, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस. सो प्यार करने से पहले सोच लीजिएगा. आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, प्यार करने से पहले सोचा थोड़ी जाता है, अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग हार्ट ब्रेक कर ही नहीं होते, मतलब उनके हार्ट ही नहीं ब्रेक होते. बात तो सही है. सो थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशों के लिए, और बिल्कुल देर किए बिना आपका ये गाना हम प्ले करेंगे. ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को, और ये रहा आपका ये गाना.

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ इंस्टाग्राम ने कुछ नई चीज की है एंड आई थिंक मुझे आपको उसके बारे में बताना जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबली आपने सोशल मीडिया पर कोई ना कोई रील इसके बारे में देख ली होगी, लेकिन इन केस नहीं देखी है और आपको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम क्या नया कर रहा है, लेट मी टेल यू। जी हाँ, सो इंस्टाग्राम का जो एक नया फीचर है जिसमें न्यू मेटा AI फीचर है, उनका म्यूज स्पार्क, और ये सच में बहुत सारे लोगों के लिए गड़बड़ कर सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइवेट प्रोफाइल्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, मतलब उसको हर कोई नहीं देख सकता, तो फिर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपकी प्रोफाइल पब्लिक है, तो इंस्टाग्राम जो है उन्होंने एक AI म्यूज यानी कि म्यूज स्पार्क फीचर जो है वो शुरू किया है, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति आपकी पिक्चर से एक AI पिक्चर जो है वो बना सकता है, एक AI इमेज जो है वो बना सकता है, और उसके बाद जो है वो उसके थ्रू कंटेंट बना सकता है किसी भी टाइप का। जी हाँ, और ये चीज जो है वो इंस्टाग्राम ने कर दी है टू ऑल द पब्लिक प्रोफाइल्स। सो अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल है, अगर आपकी प्राइवेट प्रोफाइल नहीं है, तो भी आप इसे बंद कर सकते हो। जी हाँ, आपको सब सेटिंग्स में जाना है और सीधा जो कि अपनी प्रोफाइल पर जाना है, वो जो 3 लाइंस आती हैं वहां पर आपको जो है राइट पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स एंड एक्टिविटी में जाना है, और उसके बाद आपको देखना है नीचे तीसरा स्टेप है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है कि शेयरिंग एंड रीयूज कहां पर है। जी हाँ, वो जहां पर आपको दिखेगा उस पर क्लिक करके आपको उसे बंद कर देना है। जी हाँ, आपको उसे बंद कर देना है ताकि ऐसा कोई भी आपकी प्रोफाइल के साथ या पिक्चर्स के साथ ना कर पाए। जी हाँ, आपको बताइए ये AI जो चीज है, ये AI का जो पूरा झमेला है, ये गड़बड़ कर रहा है, बहुत सारी डीप फेक्स बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, और सोशल मीडिया पर इस वजह से बहुत सारा बवाल जो है वो मच रहा है। सो इंस्टाग्राम का जो ये फीचर है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो और ये आप बंद कर सकते हो और इससे आपको मदद मिलेगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इंस्टाग्राम हमसे बिना पूछे कुछ ना कुछ नया करता क्यों रहता है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमें बिल्कुल नहीं बताते, वो हमें बताते हैं कि सिक्योरिटी सेटिंग्स जो है, प्राइवेसी सेटिंग्स जो है, वो यू नो व्हाट चेंज हो गई है, तो आप उनको रिव्यू कर लो। अरे भाई, वो रिव्यू करने के चक्कर में जब हम जाते हैं तो हम उस इतने बड़े चिट्ठे को देख के डर जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, इतना बड़ा क्या पढ़ेंगे हम ये चिट्ठा, तो हम अग्री कर देते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। जी हाँ, हमें पढ़नी चाहिए चीजें और फिर ही हमें अग्री करनी चाहिए। सो ये जो है फीचर जो इंस्टाग्राम का म्यूज स्पार्क, इसको आप बंद कीजिए और खुश रहिए। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Digicel, better together.
7: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
8: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
9: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
8: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
8: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
10: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों, मैं जब भी बात करती हूँ देशों की, कंट्रीज की, जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं, खासकर अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं और साथ में अपने लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योर फील करवाती हैं, जी हाँ, तो उसमें दुबई का नाम जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि दुबई सच में बहुत ज्यादा सेफ कंट्री मानी जाती है और सेफ्टी के साथ साथ वो लोगों के वेलबींग का ख्याल भी बहुत ज्यादा रखती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा अननेसेसरी टैक्सेस नहीं लगाती वो अपने लोगों पर, एंड दैट इज व्हाट दुबई इज फॉर यू। जी हाँ, सो दुबई ने एक और बहुत ही हार्ट वार्मिंग इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, और ये है ब्रेड फॉर ऑल। यानी कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं खाना खरीदने के तो वो भी नहीं सोएगा। जी हाँ, सो दुबई इज वन प्लेस विच हैज ऑलवेज बीन ऑलमोस्ट अ स्टेप अहेड इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। जी हाँ, ये जो लेटेस्ट इनोवेशन है वो स्मार्ट मशीन्स के तौर पर उन्होंने दिखाई है, जो कि प्रोवाइड करेंगी फ्रेश ब्रेड अराउंड द क्लॉक टू दोज इन नीड। मतलब जिनको जरूरत है उनको फ्रेश ब्रेड जो है वो मिलेगा, और ये मशीन जो है वो लॉन्च की गई है। जी हाँ, इनफैक्ट यही नहीं बल्कि ये मशीन जो है वो डोनेशंस भी कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लीडिंग देयर सपोर्ट टू द यू नो टू दिस नोबल कॉज इनिशिएटिव। सो ये मशीन जो है वो सिर्फ ब्रेड प्रोवाइड ही नहीं करेगी सिर्फ होमलेस को या जिन लोगों के पास खाना नहीं है या पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए, बट उन लोगों से डोनेशन भी ये इकट्ठा कर सकती है जो इस यू नो ग्रेट कॉज में अपना हाथ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये जो है वो कोलैबोरेशन है बिटवीन मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तुम और ग्लोबल इनिशिएटिव है उनका, और साथ में है मोहम्मद बिन राशिद ग्लोबल सेंटर का जो कि कंसल्टेंसी है उनकी। जी हाँ, तो ये इनिशिएटिव जो है ये खूबसूरत हार्ट वार्मिंग इनिशिएटिव जो है वो उन्हीं की तरफ से शुरू किया गया है। मतलब इतनी सारी कंट्रीज हैं, चाहे कितनी भी अमीर कंट्री क्यों ना हो, कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा तो मिल ही जाएगा जो कि भूखा हो, जिसके पास पैसे ना हो, या जो बेगर हो, जो ऐसी पोजिशन में ही ना हो जो अपने लिए खाना जो है वो कमा पाए या खरीद पाए। लेकिन दुबई ने ठान ली है कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होगा, हम अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है, कोई नहीं भी खरीद सकता, उसको भी हम फ्री खाना देंगे, एंड नॉट जस्ट नॉर्मल खाना बल्कि फ्रेश ब्रेड। जी हाँ, इमेजिन क्या क्या कंट्री है दुबई, राइट? मतलब आई हैव टू से मतलब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पीपल जो कि लिटरली इतने जबरदस्त से फैसले ले रहे हैं दुबई में। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। वो जो भी MOU इन्होंने साइन किया था, उसकी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा दी हैं, दोनों ही कंट्रीज ने। नाउ लेट्स जस्ट सी, और जरा आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले IRGC का दावा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। जी हाँ, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। IRGC ने दावा किया कि रविवार और सोमवार सुबह हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। BBC फारसी ने IRGC के हवाले से बताया कि इन हमलों में कई महत्वपूर्ण ठिकानों और सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया गया है। IRGC ने सोमवार सुबह जारी किए गए बयान में कहा कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर मौजूद बड़े मिसाइल भंडार और ईंधन टैंकों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया, जिससे वहां आग लग गई। IRGC ने बताया कि बहरीन स्थित शेख ईसा एयर बेस को निशाना बनाया, और IRGC के अनुसार इस हमले में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर, रख रखाव केंद्र, P-8 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान के हैंगर, ड्रोन कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। कहने का मतलब है, ये नहीं सुधरने वाले, ना अमेरिका ना ईरान। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग बाय मेरे निबिया के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ पर एक नाव हादसा हुआ है वियतनाम में। 15 भारतीयों की मौत के बाद बोट का कैप्टन गिरफ्तार हो गया है। जी हाँ, वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास एक स्पीड बोट हादसे के बाद पुलिस ने कैप्टन गुएन होंग हाय को गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन पर समुद्री और जलमार्ग सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप है और उसके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। वियतनाम के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक अखबार पीपुल्स आर्मी न्यूज़पेपर ने कैप्टन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अखबार के मुताबिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान कैप्टन गुएन होंग हाय के रूप में हुई है। वह एन जियांग प्रांत के सोन किएन इश्थुआन तियेन गांव के रहने वाले हैं। इस हादसे में तमिलनाडु के 10 लोग समेत कुल 15 भारतीयों की मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने बताया कि मरने वालों में तमिलनाडु के 10, केरल के 2 और आंध्र प्रदेश के 3 लोग शामिल हैं।

जी हाँ दोस्तों, और दिल दहला देने वाली खबरों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि थाईलैंड से भी एक बहुत ही बुरी खबर आई। थाईलैंड के बैंकॉक में के एक बार में आग लगने के बाद तस्वीरें सामने आई है, वहां पर आग से 27 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चातुचक के एक बार में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में हुए इस हादसे में 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि लिटरली दिल दहला देंगी। जी हाँ, फायर ब्रिगेड को रविवार को आधी रात के बाद आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि लोग आग और धुएं से बचने के लिए बार के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आए कुछ वीडियो में बार से उठती आग की ऊंची लपटे और जान बचाकर भागते लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए भी और गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। पब में आग लगने के बाद एक महिला ने बताया कि हादसे के बाद से ही उनका बेटा भी मिसिंग है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आग लगने के समय बार में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार से भी पूछताछ की गई। संगीतकार के अनुसार अगर सबसे पहले बिजली के कटआउट स्विच में लगी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और कुछ ही पलों में पूरे परिसर में आग और धुआं फैल गया।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार से निव्या के साथ। दोस्तों, एक गेम है और उस गेम को देखने का एक तरीका है, और वो तरीका बहुत ही ज्यादा क्लासी है। आई मीन, इफ यू आर अ सोकर फैन, इफ यू आर अ बेसबॉल फैन, इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, आप मजे से कम्फी सा कुछ पहन के जाओगे और मजे से उस गेम का आनंद लोगे। लेकिन देन देयर कम्स विंबलडन। जी हाँ, अब जब विंबलडन आता है तो लोग सूटेड बूटेड होकर निकलते हैं, और ऐसे ही सूटेड बूटेड लोग जो कि सेलिब्रिटीज से लेके दूसरे सुपर स्पोर्ट्स पर्सन से लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फैशन की ए गेम लेकर पहुंचते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फैशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी जेंटलमैनली फैशन। जी हाँ, मतलब वो जो रॉयल फैशन होता है ना, वो निकल कर आता है विंबलडन में। जी हाँ, सो विंबलडन का मेन सिंगल तो जीत चुके हैं यानिक सिन्हा, लेकिन यहां पर जो लोग उस मैच में पहुंचे थे वो बहुत ही जबरदस्त है। सो वैभव सूर्यवंशी और साथ में अभिषेक शर्मा और साथ में युवराज सिंह, सबके सब लोग जो है वो पहुंचे थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जी हाँ, अनन्या पांडे से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके शुभमन गिल से लेके और भी बहुत सारे लोग पहुंचे थे। बट देन अगेन, जब आप विंबलडन देखते हो, आप नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के जाते हो, आप सूट पहन के जाते हो, टक्ड इन होता है, क्लासी तरीके से होता है, मतलब इतने क्लासी तो लोग अपनी शादी पे भी नहीं लगते जितना वो विंबलडन पे लगते हैं। या दैट्स व्हाट विंबलडन इज अबाउट। मतलब गेम तो गेम है, वो तो मजे करने आते हैं लोग, मतलब टेनिस इज वन गुड स्पोर्ट, लेकिन विंबलडन क्या कहूं मैं इसके बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यानिक सिनर जो कि इटली के हैं वो जीत चुके हैं फिर से। जी हाँ, इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष यानी कि मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, और उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। जी हाँ, फाइनल में उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, और ये उनका दूसरा विंबलडन है यानी कि टेनिस टूर्नामेंट है जो कि वो जीत चुके हैं। सो सिनर ने लंदन के सेंटर कोर्ट में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। यानिक सिनर का ये लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल है और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। एंड यू नो व्हाट, हाउ यंग ही इज, मतलब कितना यंग है ये इंसान, और आई मीन लुक एट what he plays and how he plays, I am a fan. आप मुझे बताइए कि आप कभी अगर बात हो टेनिस की तो किसके फैन हो, मतलब किसकी आपको याद आती है और किसका मैच देखकर आपको ऐसा लगता है कि क्या लाजवाब गेम हमने देखा है, और क्या आपको टेनिस पसंद है भी या नहीं, जरूर मुझे बताइएगा। और विंबलडन में आपको जब लोग देखने को मिलते हैं, सेलिब्रिटीज देखने को मिलते हैं जो कि लिटरली रॉयल फैशन सर्व करते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ न्यू यूएफओ फाइल्स लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जी हाँ, अगर आपने इन फाइल्स पर नजर नहीं बनाई है तो जरूर बनाइए, और अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं यूएफओज में, स्पेस में, और ये सारी एलियन एक्टिविटीज में, फिर तो आपके लिए ये फाइल्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रह सकती हैं। वेल, हम सबको पता है कि ट्रंप ने ये क्यों करना शुरू किया था, क्योंकि वो ध्यान भटकाना चाह रहे थे वॉर से, अपने वो सारे कांड से जो कि उन्होंने किए थे एप्सटीन के साथ। बट द थिंग इज कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंतजार था इन फाइल्स का। अब चौथा जो है वो ट्रेंच लॉन्च किया गया है, पब्लिश किया गया है फ्राइडे को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर्स की वेबसाइट पर, जहां पर बहुत सारी डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको ऑफकोर्स रिटर्न डाटा मिलेगा, आपको फोटोज मिलेंगी, आपको वीडियोज मिलेंगी, और इनफैक्ट एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग बनी हुई है इसमें, वो है एक 6-pointed स्टार जो कि येलो सी के ऊपर दिख रहा है, जो कि रिजेंबल कर रहा है बेसिकली 6-pointed स्टार को लिटरली। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो यूएफओ है या फिर कोई वो एलियन एक्टिविटी से रिलेटेड कोई और चीज है, नोबडी नोज। लेकिन येलो सी के ऊपर एक 6-pointed स्टार जो है वो रिजेंबल करता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने इन फाइल्स को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। फोर्थ ट्रेंच जो है वो कर दिया गया है रिलीज, और यहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली जो वीडियो है उसमें आपको बहुत सारी चीजें, मतलब ऑफकोर्स ये अपनी परसेप्शन पे भी फिर आप लेकर आ सकते हो, मतलब आपको चीज दिख रही है लेकिन आपको उसमें क्या इमेजिन आप कर पा रहे हो, मतलब आपको क्या लग रहा है, दैट इज अप टू द पीपल। जी हाँ, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बोला है कि देखिए, मैंने तो कहा ही था कि पहले ही मैं लॉन्च करूंगा, और अब आप खुद ही देख सकते हो कि क्या क्या हमारी धरती में होता आ रहा है, जिन चीजों को हमने आपको बताया भी नहीं था पहले, लेकिन अब हम बताने के लिए तैयार हैं, और ये उनमें से एक है। सो जरूर देखिए इन फाइल्स को, और मुझे बताइए आपको क्या चीज बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग लगी। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से शुरू तो पहले ही हो गया है, क्योंकि गाने हम आपके लिए पहले ही पुराने प्ले कर रहे हैं, वही गाने जिनका मतलब था और वो मतलब बहुत ही ज्यादा प्योर था। जी हाँ, सो उस एरा के गाने, उस एरा के किस्से यही होगा। एक और खूबसूरत गाना अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि जबरदस्त है, और इस गाने का नाम है छुपा कर मेरी आंखों को। सुनते हैं इसको, और ओल्ड इज गोल्ड का मतलब यही है कि कोई गाना अगर पुराना आप चाहते हो हमसे प्ले करवाना तो जल्दी से फरमाइश कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट टाइम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए। और ये रहा आपके लिए ये खूबसूरत सा गाना।

आपसे के साथ। अगर हम बात करें उस एरा के दो ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने अपनी ही अदा क्रिएट की, तो आप लोगों के दिमाग में नाम तो दो ही आएंगे और वो नाम मोस्ट प्रोबेबली देवानंद साहब और शमी कपूर साहब के होंगे, राइट? आप लोग बोलोगे कि हाँ बात तो सही है, मतलब ये दोनों कुछ भी करते थे लेकिन जो भी करते थे वही ट्रेंड बन जाता था। मतलब उनकी अदाएं वो लाजवाब बाकमाल, और वो अदाएं मतलब कोई कितना भी अच्छा एक्टर वो कॉपी नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने अपनी एक यूनिक अदा क्रिएट की। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों को ही उनकी अदाएं नासिर हुसैन साहब ने दी थी, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, मुनीम जी और पेन गेस्ट, ये दो मूवीज थी देवानंद साहब के करियर में जहां पर नासिर हुसैन साहब ने उन्हें देवानंद बनाया। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जावेद अख्तर साहब ने कहा है। जी हाँ, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि नासिर हुसैन साहब ने ही देवानंद साहब को देवानंद बनाया और शमी कपूर साहब को शमी कपूर बनाया। वही अदाएं, वही यूनिक अदा जो कि किसी में नहीं थी, और ये दोनों को ही नासिर हुसैन ने ऐसा लाजवाब बनाया। एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए यहाँ पर, और फिर करते और भी बातें।

दोस्तों कुछ गाने ना आपका मूड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि स्प्रिंग जो है वो आ गया। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा स्प्रिंग तो बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पे, बल्कि स्प्रिंग तो आया ही नहीं है, ठंड हो रही है काफी सारी। सो तुम स्प्रिंग की बात मत करो, मतलब हम यही कहेंगे कि स्प्रिंग आ जाए जल्दी, लेकिन उसमें टाइम है। लेकिन कुछ गाने आपको वैसी फीलिंग देते हैं, मतलब कुछ गाने आपको ठंडा फील कराते हैं, कुछ गाने आपको ऐसा लगेगा ओह माय गॉड हाय गर्मी, कुछ गाने आपको ऐसा फील करवाएंगे वाह सब कुछ खिल रहा है, मतलब कुछ नया पनप रहा है और वही स्प्रिंग की फीलिंग होती है। और कुछ गाने आपको पतझड़ यानी ऑटम वाली फीलिंग देंगे। ये जो गाना है ना हम आपकी आंखों में, कितना खूबसूरत गाना है गीता दत्त जी का, राइट? मतलब रफी साहब और गीता दत्त जी ने कितनी खूबसूरती से इसे बनाया है और मैं कहूंगी कि काबिले तारीफ है भाई, बिल्कुल काबिले तारीफ है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना हम आपको सुनाने वाले हैं और ये गाना जो है वो है फरमाइशी गीत हम नहीं कहेंगे बल्कि रेकमेंडेड सॉन्ग हम कहेंगे, क्योंकि ये रेकमेंडेशन आया है बहुत ही खास इंसान की तरफ से। जी हाँ, हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से आया है ये गाना और गाने का नाम है मुझे दर्दे दिल का पता ना। जी हाँ, रफी साहब का गाया हुआ गाना है, मजरू सुल्तानपुरी जी का बनाया हुआ है और चित्रगुप्त का है ये और मूवी है आकाशदीप, 1965 में ये आई थी। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी सर कुछ रेकमेंड करते हैं बड़ा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा होता है, मज़ेदार सा होता है कुछ। थैंक यू सो मच सर अपनी रिकमेंडेशन के लिए और बिना देर किए अगेन इसे भी प्ले करेंगे और फिर करेंगे आपसे और भी बात।

क्या बात है, कहना पड़ेगा बहुत ही लाजवाब रिकमेंडेशन। मतलब सच में, मतलब दिल से कहा जा रहा है कि सच में बहुत ही खूबसूरत रिकमेंडेशन। मतलब कुछ गाने जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ गाने जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुने भी नहीं होते और वो मेरे दिल के इतने करीब हो जाते हैं, और उन्हीं गानों में से एक है। कितना खूबसूरत गाना था, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर हमें बताइएगा। और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अरे मतलब आप रेडी नहीं हो? चलिए आप घड़ी की तरफ देख लीजिए, इशारा कर दिया है घड़ी ने। वो कह रही है कि नीमे शर्मा, अब तुमको होगा जाना, तुमको होगा जाना, क्योंकि हमको और भी बहुत सारी चीजें करनी है। एंड आई एम लाइक ओके, ठीक है, अब आप लोगों को और भी चीजें करनी है तो आप कर लीजिए और मजे कीजिए, फन कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये आखिरी गाना, अगेन ये कोई मेरी तरफ से नहीं है, ये अगेन एक फरमाइशी गीत है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। गाने का नाम है हाय हाय ये मजबूरी। अच्छा, जब जसी जी ने इस गाने को फरमाइश किया तो मैंने तो जसी जी को कह ही दिया, अपने लिसनर को कह ही दिया कि अरे सर, मतलब अभी तो ये मौसम भी नहीं है, आप ये गाना कहां से आपके दिमाग में आ गया? तो उन्होंने कहा कि मैं मनोज कुमार की कोई वीडियो देख रहा था और फिर मेरे दिमाग में ये गाना आ गया। आई एम लाइक ओके कूल, डेफिनेटली हम इसे प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, एंड थैंक यू सो मच जसी जी हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी प्यारी फरमाइशें करने के लिए, प्यार देने के लिए हमारे प्रोग्राम को। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। एंड टू माई ऑल लिसनर्स, आई लव यू सो मच। आप सबको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा ये लास्ट सॉन्ग, और इसी के साथ मिलते हैं अब आपसे कल। बाय बाय, सी यू, टाटा।

से जो पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

हमने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fijian India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। जी हाँ, सबसे पहले बूवल में दो दुकानों में चाकू की नोक पर लूट, दो टीनेजर्स गिरफ्तार। जी हाँ, ब्रिस्बेन के बूवल इलाके से सुबह क्राइम की एक बड़ी खबर आई। ब्रिस्बेन रोड पर दो अलग अलग दुकानों में सुबह सुबह चाकू दिखाकर कैश बॉक्स लूटने की वारदात हुई। हालांकि क्वींसलैंड पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही 17 और 19 साल के दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्वींसलैंड में 600 से ज्यादा म्यूजिशियंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। जी हाँ, म्यूजिक लवर्स के लिए ब्रिस्बेन से एक बेहद खूबसूरत खबर है। जी हाँ, क्वींसलैंड में आज एक साथ 600 से ज्यादा ट्रॉम्बोन बजाने वाले म्यूजिशियंस इकट्ठा हुए। इन सब ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉम्बोन ग्रुप बनाने और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की एक शानदार कोशिश की है, जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे। वहीं सिडनी चाइल्ड केयर वर्कर पर बड़ा एक्शन, 120 से ज्यादा परिवारों से संपर्क। जी हां, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने एक चाइल्ड केयर वर्कर के खिलाफ चल रही जांच के तहत अब तक 120 से ज्यादा परिवारों से संपर्क किया है। 35 साल के इस आरोपी पर पिछले 16 सालों के दौरान बच्चों से जुड़े कई गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। वहीं दिग्गज एक्टर सैम नील का 78 साल की उम्र में निधन। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जुरासिक पार्क और पीकी ब्लाइंडर्स जैसे सीरीज में अपने बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले लेजेंडरी एक्टर सैम नील का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से पूरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फिल्म जगत में शोक की लहर है। वहीं जिम्बुम्बा में होने वाले फ्लेम बारबेक्यू एंड म्यूजिकल फेस्टिवल के टिकटों की बिक्री शुरू। ब्रिस्बेन के लोगों के लिए वीकेंड प्लान करने की अच्छी खबर है। इस सितंबर में जिम्बुम्बा पार्क में होने वाले मशहूर फ्लेम बारबेक्यू एंड म्यूजिक फेस्टिवल के अर्ली बर्ड टिकटों की सेल आज से शुरू हो गई है। वहीं नेशनल ट्री डे के 30 साल लोगन सिटी में लगेगा बड़ा प्लांटेशन कैंप। पर्यावरण को बचाने के लिए ब्रिस्बेन के पास लोगन सिटी काउंसिल ने इस महीने 26 जुलाई को होने वाले नेशनल ट्री डे की 30वीं सालगिरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इगलबी वेटलैंड्स और रिवरसाइड पार्क में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में आज राष्ट्रीय शोक। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के कल हुए निधन पर भारत सरकार ने गहरा दुख जताया है। उनके सम्मान में आज पूरे देश में एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। वहीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत का जलवा। भारतीय छात्रों ने एक बार फिर ग्लोबल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं गगनयान मिशन के लिए इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। स्पेस साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के मिशन गगनयान की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। भारत ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 बड़े सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं ओमान के पास कमर्शियल शिप पर हमला, भारत ने जताई चिंता। ओमान के समुद्र तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। इस घटना के बाद से जहाज पर मौजूद एक भारतीय क्रू मेंबर लापता है। वहीं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने को तैयार। पॉल्यूशन को कम करने और रेलवे को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर लाने के लिए भारत एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, क्रूड ऑयल के दाम उछले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं और अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं ईरान का खाड़ी देशों पर पलटवार, दागी मिसाइलें। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान की सेना ने खाड़ी के देशों यानी कि गल्फ कंट्रीज में मौजूदा अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में एयर रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की दोनों देशों से शांति की अपील। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान दोनों से तुरंत इस लड़ाई को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती ये जंग पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शांति के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसी के साथ बैंकॉक के एक बार में भीषण आग, 27 लोगों की मौत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक बुरी खबर आई है, जहां एक पब और बार में अचानक भयानक आग लग गई। इस हादसे में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ताइवान और चीन में तूफान बावी का कहर। भयानक समुद्री तूफान बावी ने ताइवान और चीन के तटीय इलाकों से भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके साथ इसराइल में 27 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव। इसराइल की संसद ने ऐलान किया है कि देश में अगले नेशनल इलेक्शन इस साल 27 अक्टूबर को कराए जाएंगे। इस चुनाव को वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़े टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ, यानी कि खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2030 में खेल सकती हैं 64 टीमें। जी हां, फुटबॉल फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने संकेत दिए हैं कि साल 2030 के वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या को बढ़ाकर 64 किया जा सकता है। मौजूदा वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेल रही हैं, जो कि ऑलरेडी ज्यादा है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक्स्ट्रा टाइम में जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची अर्जेंटीना। मौजूदा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। एक्स्ट्रा टाइम में जूलियन अल्वारेज और लुटारो मार्टिनेज के गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने यह मैच जीता। नहीं, जैनिक्स सिनर ने फिर जीता विंबलडन का खिताब। टेनिस की दुनिया से बड़ी खबर है, जहां वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी जैनिक्स सिनर ने अपना शानदार फॉर्म दिखाते हुए विंबलडन 2026 के मेन सिंगल का खिताब दोबारा जीत लिया है। इसी के साथ अगर बात की जाए महिला क्रिकेट की, तो यास्तिका भाटिया के शतक से भारत जीत के करीब। जी हां, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे मैच में भारतीय महिला टीम की स्टार बैट्समैन यास्तिका भाटिया ने कमाल कर दिया है। उन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए शानदार 113 रन बनाए। वहीं ब्रैंडन मैकुलम ने छोड़ा इंग्लैंड टेस्ट टीम का कोच का पद। जी हां, न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद ब्रैंडन मैकुलम ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आईपीएल से बड़ी खबर, सीएसके और स्टीफन फ्लेमिंग का 17 साल का साथ छूट गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया
4: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस
3: गो फॉर द बेस्ट वीरे अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ एंड द बेस्ट पॉइंट They understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
5: अरे वाह इनका पता बताना
6: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5 1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171 वेबसाइट www.arshadlawyers.com We pride ourselves in providing excellent service.

0: योगी से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। हुण मैं जेड़ी सीरीज बारे सब तो पहला दसनी हैगी है ओ नू तुसी देख लोगे ना जो सीरीज नू ता तुसी ना एक बहुत ही फेमस हुई है सीरीज असुर जिदी हमेशा गल चलती है। तुसी असुर नू भी भूल जाओगे इन्नी ज्यादा सोहनी है ते उसका नाम पता की है उसका नाम है दहाड़ जी। हाल इस दिविच पहला नाम ही दहाड़ था है ते इस सीरीज दिविच सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल दिविच है की है। 2023 विच रिलीज हुई सी है सीरीज। ए सीरीज अमेज़न प्राइम वीडियो ते हैगी है, उत्थे जाके तुसी देख सकते हो। इसे हर एक एपिसोड विच तुहानू शानदार एक्शन देखण नू मिलूगा, बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है। इस विच उहनां दे नाल मतलब सोनाक्षी सिन्हा दे नाल विजय वर्मा भी है ते गुलशन दवैया भी है। ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगी, जे तुसी नहीं देखिया तां इन्ना जरूर कहूंगी कि जिहड़ा एक्टर तुहानू हर जगह हीरो हीरो हीरो हीरो नजर आउंदा उही कुछ अजिहा कर जांदा है कि तुसी सोच ही पै जाओगे। ते सोनाक्षी सिन्हा दी बहादुरी तां काबिले तारीफ है, एक्टिंग बहुत ज्यादा शानदार कीती है, तुसी देखियो जरूर एक बार।
1: मुंडा साधुआं दा

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वन सर वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो एक ना सीरीज हैगी है, उस पंकज त्रिपाठी भी है, उस की कहते होंगे आली फजल भी है। विजय वर्मा का एड्डा वड्डा रोल नहीं है ते पर है, रसिका दुग्गल भी है, श्वेता त्रिपाठी भी है, बड़ी वधिया सीरीज है। आई थिंक तुसीं गैस कर लिया होना क्योंकि वह सीरीज है मिर्जापुर इस शामिल है। डार्क एक्शन है इस ते सस्पेंस है। पंकज त्रिपाठी की सीरीज है मिर्जापुर। इस सीरीज का हर सीजन लोगों ने ना खूब सराया है, बहुत ज्यादा प्यार मिले, हर किरदार नू प्यार मिलिया है का, जो भी हो भी। इस सीरीज नू भी तुसी प्राइम वीडियो ते देख सकते हो, जरूर देखियो, पहले सीजन तो देखना शुरू करो जो, क्योंकि जे तुसी किसे विचकार किसे सीजन तो देखना शुरू किया था थानू समझ ही नहीं आऊगा। इस नू देखना है तो थानू फर्स्ट सीजन तो देखना पऊगा।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: Vadere kifayati rihayat di shuruaat vadere karan di uplabdhta naal hundi hai. Ise layi navi Queensland sarkar soobe bhar vich 98,000 ton vi vadh nave karan de nirman da raah khol rahi hai. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। Authorized by the Queensland Government, Brisbane. Navi Queensland Sarkar 4000 hectare to vivad jameen rihayish layi uplabdh karwa rahi hai ate lodwandan layi 53500 samajik ate community ghar muhaiya karwa rahi hai. A place to call home khojo. Queensland Sarkar Brisbane walon adhikarat. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Mr.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400।

0: 4045 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड़ा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, विरे। अतुल भारद्वाज जी नू अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी इंट्री केसेस नू हैंडल करन जी भी ओ एक्सपर्ट हन।

0: क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ, एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: है मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप हरि कहें, नारायण कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, कुछ भी कहें, सुबह उठते ही उसका नाम लेना नियति है हर धर्म की, हर कर्म की। वैसे आप उसे जिस भी नाम से पुकार लें, वो आपको अपने बंदे के रूप में ही जानता है। उसके लिए सब समान है, ना तो वो धर्म देखता है, ना देश और ना ही सरहदें। वो तो बस बंदे का दिल देखता है। अगर आपका मन भी सच्चा है, साफ है, तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना छोटी हो लेकिन उस तक पहुंचेगी जरूर, और न सिर्फ पहुंचेगी वो आपकी सुनेगा भी जरूर। तो आइए मिलकर अरदास लगाते हैं उससे और कहते हैं कि बस सुने, हमारी नहीं हम सबकी सुने और सबकी जिंदगी में खुशियां भर दे। आइए जीवन आधार में बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, आपके साथ इस सुबह के ताजा तरीन सफर में सताक्षी एक बार फिर से है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो हम बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, या ये कहें कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, बड़ों को देखकर कभी भी छोटों को मत भगाइए या छोटों की बात को नजरअंदाज मत कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जहां छोटों का काम होता है ना, वहां बड़े कुछ नहीं कर सकते। अब जरा सोच के देखिए, क्या सुई का काम तलवार कर सकती है? नहीं ना। इसलिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ना तो उम्र में और ना ही ओहदे में। ये बात आपके ओहदे पर भी बिल्कुल लागू होती है कि आप सबके साथ एक समान व्यवहार रखें, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन के आधार से जुड़ा ये खास सफर है जीवन आधार, जिसे आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, इस सुबह के सफर के साथ हम रोज आगाज करते हैं उन विचारों का जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, हमारे नए दिन की शुरुआत के लिए जरूरी हैं और हमारे रिश्तों, हमारे विचारों के लिए जरूरी हैं। तो चलिए अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता निकाल के कुछ शुद्ध विचारों के साथ करते हैं दिन का आगाज जीवन आधार में, और बढ़ते हैं आगे एक और गाने के साथ।

परिवार तब तक एक परिवार है दोस्तों, जब तक सब एक ही माला के मोती बनकर रहें, यानी कि बिखरे नहीं, एक साथ एकजुट होकर रहें। लेकिन जिस दिन ये मोती बिखर जाते हैं ना, उस दिन परिवार भी बिखर जाता है, बिल्कुल विभीषण की तरह। किस तरह विभीषण ने रावण का भेद देख के राम को विजयी बना दिया था, याद है ना? जब एक परिवार अलग होता है तो घर के भेद भी अलग होते हैं। याद है आपको कि कैसे जब आंखों से आंसू गिरते हैं तो ये बता देते हैं कि आप कितने दुखी हैं। ठीक उसी तरह से जब फैमिली के मेंबर्स अलग होते हैं तो ये बता देते हैं कि घर का भेद क्या है, घर की कंडीशन क्या है। इसलिए हमेशा एक परिवार बनकर एक माला में एकजुट होके रहिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ। जीवन की नैया को बचाकर उसके खिवैया बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस ऊपर वाले तक पहुंच का मार्ग खोज लिया जाए, उस शक्ति को जो इस संसार को चला रही है उसको पहचान लिया जाए, उसी शक्ति को जानने समझने पहचानने और जीवन धारा से जुड़ने की एक कोशिश जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं और इसी सफर में आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ।

जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम या देह। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम या देह। धरती ही पर परत है, सीत घाम और मेह। नहीं समझे? रहीम जी का ये दोहा जिंदगी की एक बहुत ही कीमती सच्चाई को बताता है दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करना चाहिए, यानी कि जो आप पर

बीतती है उसे सहना चाहिए, क्योंकि इसी धरती पर ही तो सर्दी गर्मी बरसात पड़ती है। यानी जिसका शरीर जैसा भी हो उसे सुख दुख इसी दुनिया में रहकर सहना होता है, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे निभाना तो पड़ेगा, है ना। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, एक और गाने के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के।

जीवन के आधार से जुड़ा सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ, और इस सफर में कुछ खास बातों के साथ जिंदगी से जुड़ी, आपसे जुड़ी और आपके सपनों से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर सुनेंगे एक और ऐसा गीत जो आपको जिंदगी के मायने समझा देगा। सुनते रहिए जीवन आधार रेडियो प्रसवानी।

रूठे सुजन मनाइये जो रूठे 100 बार रहिमन फिर पियोइये टूटे मुक्ता हार। जी हाँ, अगर आपके अपने आप से 100 बार भी रूठ जाए ना दोस्तों, तो रूठे हुए को अपनों को मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर मोतियों की माला टूट जाए तो उसे बार बार धागे में पिरोने की आदत आपको होनी चाहिए। ऐसा होता है कि जब रिश्ते बड़े होने लगते हैं ना, तो अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश करते हैं, ठीक उस माला की तरह जो ढीली हो जाती है और उसके बिखरते मोती इधर उधर भागते हैं। बहुत जरूरी है कि फिर से उन मोतियों को एक नए धागे में पिरोकर अपने पास संभाल के रखा जाए। आप समझदार हैं और अगर परिवार के सदस्य परिवार का साथ छोड़ना या आपसे रूठना जानते हैं, तो आपको उन्हें एक धागे में पिरोना, उन्हें मनाना आना चाहिए। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ सताक्षी है।

तो दोस्तों, ये था आज एक और जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास सफर जीवन आधार। इसी सफर में कल एक बार फिर से होगी आपके साथ सुबह की नई किरण के साथ फिर से मुलाकात। और कल जब तक हम और आप मिलते हैं, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईश्वर यानी इस दुनिया का पालनहार वो शक्ति है जो हम सबको चला रहा है और जिसके लिए हम किसी भी धर्म के हों समान हैं। उसी ईश्वर को आज का ये आखिरी गीत समर्पित करूंगी।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: हेलो जी, गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। प्रोग्राम चल रहा है, शुरू हो चुका है चानी का सफर। तो उम्मीद करती हूं आपका दिन एक मुस्कान के साथ शुरू हो गया होगा। अगर आप सभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर हैं या फिर चाय की पहली सिप ले रहे हैं, तो अगला कुछ वक्त जो है हम एक साथ जो है टाइम जरूर गुजारेंगे, क्योंकि दोस्तों चानी का सफर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सफर हमारा हमेशा मुस्कुराते हुए, एनर्जेटिक, हंसते हुए जाए, यही जी मेरी दुआएं हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग वेदर अपडेट जानते हैं। ब्रिस्बेन में आज जो है सुबह ठंडी और ड्राई कंडीशन से रहने की उम्मीद है। दिन भर धूप निकल सकती है और मौसम काफी प्लेजेंट रहेगा, इसीलिए जी मॉर्निंग वॉक या आउटडोर प्लान्स के लिए अच्छा दिन है, तो आप सभी कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों इसी के साथ आइए कुछ हेडलाइंस जो है जान लेते हैं। ब्रिस्बेन स्पोर्ट्स की बात करिए तो क्वींसलैंड टेनिस सेंटर में ब्रिस्बेन आईटीएफ प्रो टूर शुरू जो है वो हो चुका है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के यंग टेनिस स्टार्स ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालिफाइंग वाइल्ड कार्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम रग्बी अपडेट की बात करें तो वालाबीज को फ्रांस के खिलाफ जो है ब्रिस्बेन टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। टीम अब जो है अगले मैच में स्ट्रांग कमबैक की तैयारी कर रही है। वहीं पर अगर सिटी अपडेट की बात करें तो ब्रिस्बेन की नाइट लाइफ को और वाइब्रेंट बनाने के लिए कई नए रिफॉर्म्स पर चर्चा हो रही है, जिससे कि लोकल बिजनेसेस जो है और टूरिज्म जो है उनको फ्यूचर में बूस्ट मिल सकता है। तो आइए फिलहाल हम बूस्ट करते हैं आपको इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक है। जिस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर इतनी देश दुनिया की बात कर ली भाई, बॉलीवुड की तो बात बनती ही है, क्योंकि बॉलीवुड से तो हमारा टाइम पास होता है, क्यों जी, है ना दोस्तों। रणबीर कपूर के फेवरेट फैंस जो है उनके लिए बड़ी ही प्यारी प्यारी खबर जो है आ रही है। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म जो है रामायणा, उसको लेकर एक्साइटमेंट काफी हाई है। फिल्म के VFX और ग्रैंड स्केल की काफी चर्चा हो रही है और फैंस इसका टीजर का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा इंतजार और, बस कुछ ही टाइम बाद टीजर जो है सामने प्रकट हो जाएगा। इसी के साथ भाई कार्तिक आर्यन के भी फैंस कम नहीं है। उनकी अपकमिंग जो रोमांटिक फिल्म की शूटिंग है वो काफी चर्चा में है और वो काफी बिजी है। यानी कार्तिक आर्यन भाई, आप सभी को अपकमिंग रोमांटिक फिल्म दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी से मेहनत करनी ही पड़ेगी ना उनको। और सोशल मीडिया पर उनकी बिहाइंड द सीन्स फोटो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। अब देखिए बिहाइंड द सीन्स फोटो इतने पसंद आ रहे हैं, जब सामने आ जाएंगे तो क्या ही होगा, है ना, होना जरूरी भी है भाई। वहीं पे अगर जी दीपिका की बात करें तो जी दीपिका पादुकोण के नए प्रोजेक्ट को लेकर भी इंडस्ट्री में बज बना हुआ है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का फैंस को इंतजार है, तो बस ये थोड़ा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इंतजार बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि आपकी दोस्त चांदनी जनाब सभी को अपडेट्स देती रहेगी। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

हाँ जी, वेलकम बैक है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, वैसे आप सभी को पता है कि सबको क्यों कहा जाता है कि भाई हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हाँ जी, प्रकृति, नेचर, इन सब चीजों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, है ना। क्योंकि पेड़ काटना हमें बचाना चाहिए, काटना तो कभी नहीं चाहिए, इवन हमें लगाना जरूर चाहिए। ये आप सभी ने सुना होगा सबको बोलते हुए, और बहुत लोग लगाते भी हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है आप जानते हैं? चलिए आज आपको एक फैक्ट बताते हैं। एक मैच्योर ट्री जो होता है ना, एक साल में इतनी ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है कि लगभग दो लोगों की एनुअल जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये पेड़ जो है दे सकते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन आसपास क्यों बोला जाता है कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ताकि हमारा ऑक्सीजन जो है बना रहे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है आप सभी ने देखा है। तो ये जो मैच्योर ट्री है, एक साल में दो लोगों की एनुअल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का योगदान दे सकते हैं। इसीलिए जी, मौका मिलते ही आसपास जरूर पेड़ लगाएं। जी हाँ, आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

वैसे दोस्तों, हम सभी प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इतिहास की अगर हम बात करें, आज यानी कि 14 जुलाई को दुनिया के कई हिस्सों में दोस्तों बेस्टाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, जो कि फ्रांस का नेशनल डे है। ये आजादी और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के दिन जो है बेस्टाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में। जी हाँ, इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। आपको पता है आपको मैं इतने प्यारे प्यारे गीत क्यों सुनाती हूँ? दोस्तों, म्यूजिक ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, रिलैक्सेशन भी है, क्योंकि कई स्टडीज बताती है कि अपना फेवरेट म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम हो सकता है और हमारा मूड बेटर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, रिलैक्सेशन भी है। तो अपने पसंद के गीत हमेशा सुनते जरूर रहिए। तो दोस्तों, कॉफी तो बनती है भाई, बात इतनी कर रहे हैं और कॉफी ना हो तो भाई मजा ही नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया की बातें। ऑस्ट्रेलिया भर में दोस्तों विंटर सीजन का असर देखने को मिल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है वो हमेशा सलाह दे रहे हैं कि ठंड का मौसम में गर्म कपड़े पहने, हाइड्रेट रहें और सीजनल फ्लू से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमें अपनी इम्यूनिटी ना अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि कब मौसम बदल जाता है और हमारी हेल्थ कब करवट ले ले कुछ नहीं पता। तो इसीलिए भाई, अपना ध्यान अपने हाथ में है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

0: song
1: while you
0: fix.
1: It's at Cody now, I think.
0: Yep. Okay, there we go.
1: All right. Okay, sorry about that. जितने भी लोग सुन रहे हैं आपसे माफी चाहते हैं हमारा डाउन हो गया था इंटरनेट

0: Okay, I think now our listeners can listen to a monitor. Our listeners can listen to it now. I put the audio level up and it should be okay. Please, our listeners, let us know. हमारे जो इंटरनेट लिसनर्स हैं, रेडियो में तो आप लोग सुन ही रहे हैं, तो चलिए, हमारे इंटरनेट में भी बहुत से लोग हैं और कंप्लेन आया है, लेकिन चलिए, उम्मीद है कि आप सब अब सुन सकते हैं. रेडियो बिजवानी है दोस्तों, आपकी अपनी पहचान, एंड होपफुली रेडियो बिजवानी यू कैन नाउ, इट शुड बी मच बेटर. ओके, यस, आई कैन स्टिल हियर एको. एनीवे, यस्टरडे वाज सो परफेक्ट, व्हाट्स हैपनिंग टुडे?
1: I did not change
0: इज योर मॉनिटर
1: anything.
0: लो ऑल द वे?
1: I
0: Okay.
1: didn't do anything. I did absolutely
0: All
1: nothing.
0: right. Okay.
1: It's
0: I
1: a
0: know you
1: power
0: didn't.
1: outage, not me.
0: It's Optus. I mean, sorry, not Optus. It's Telstra.
1: Telstra. Blame it on Telstra.
0: जब पावर ऑफ होता है तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता सब कुछ. आई नो अ बैकअप सिस्टम इज देयर, बट फॉर

0: ओके, सो हाउ डिड यू फाइंड दिस सॉन्ग? उम्मीद है
1: गुड
0: आपको
1: गुड
0: अच्छा लगा होगा दोस्तों, और रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान. और ओके, थैंक यू शशि जी. शी इज लिसनिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड. शी सेड एवरीथिंग इज ओके नाउ. ऑलराइट, ओके ओके. देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों. मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कैरीड आउट अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन द इरानियन मिलिट्री टारगेट आफ्टर अटैक्स ऑन शिपिंग इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. टेंशंस रिमेन हाई विद कंसर्न्स ओवर ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज एंड रीजनल स्टेबिलिटी. ओके, बैंकॉक नाइट क्लब वाला जो ट्रेजेडी है, Thai authorities are investigating the devastating nightclub fire that killed at least 27 people. Early findings suggest a rapid flashover left many people unable to escape. Oh man. देखिए दोस्तों, घर पर भी हो चाहे जहां पर भी हो आप, आपका जो ये हम कभी सोचते नहीं है, कभी अगर आग लगा तो आप क्या करोगे, एस्केप प्लान क्या है, बच्चे हैं, आप क्या क्या करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमेशा कहते हैं कि घर का जो एक एस्केप प्लान होना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट हैव एस्केप प्लान कि अगर कभी कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे. मेन थिंग है दोस्तों कि निकल कर भागो आप लोग वहाँ से. ओके, और कभी कभी घर बचाने में भी आप अपना जान दे सकते हैं. अगर कुछ हो सका तो करिए. और आपके आप पूछो अपने आप से, आपके घर में कितने लोगों के पास फायर एक्सटिंग्विशर है, स्पेशली सिटिंग ऑन द किचन वॉल और समथिंग है आपके पास घर में? अगर नहीं तो तुरंत लाकर एक रखो दोस्तों. यू हैव टू हैव दैट और फायर ब्लैंकेट. फायर ब्लैंकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. अगर कभी स्टोव में कुछ हो गया, यू कैन थ्रो द ब्लैंकेट ऑन टॉप. और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है. वियतनाम बोट डिजास्टर. द बॉडीज ऑफ 15 इंडियन टूरिस्ट किल्ड इन अ टूरिस्ट बोट कैप्साइजिंग इन वियतनाम आर बींग फ्लोन होम एंड as investigations continue into the accident. Or Europe hit by extreme heat. A new report says recent heat waves have caused thousands of deaths in England and Wales, highlighting the growing impact of extreme weather. Or World Cup semi-final. Football fans are eagerly waiting the FIFA World Cup semi-finals. France takes take on Spain today, while England face Argentina tomorrow with the place in the final at stake. So today, eh? Okay. Yeah. And a lot of people will be watching. Achha. Today's highlights remind us that while the world faces conflict, tragedy and uncertainty, people everywhere continue to show resilience, support one another and look forward to moments of hope, whether through rebuilding communities or celebrating sports. दुनिया में हमको रहना है, चलना है आगे ना, चाहे धूप या छाव. We have to keep on trucking. All right. चलो सुनते हैं गीत, फिर वापस आते हैं.

0: और इस गीत के साथ 8 बज गए हैं दोस्तों। और देखिए, ये लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहेगा। और यूक्रेन स्ट्रेंथन्स यूरोपियन डिफेंस। यूक्रेन एंड 9 यूरोपियन कंट्रीज हैव अग्रीड टू फॉर्म अ न्यू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर द वंस दैट एंटर्स द अर्थ। फ्रांस हैज ऑल्सो अग्रीड टू हेल्प यूक्रेन मैन्युफैक्चर मिसाइल डोमेस्टिकली, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन यूरोपियन डिफेंस कोऑपरेशन। क्योंकि अब ये कह नहीं रहे, लेकिन जो यूरोप कंट्रीज है, आई थिंक टू देम नेटो इज बिट इफी नाउ, ओके, बिकॉज ऑफ ट्रम्प। सो वॉट दे आर डूइंग नाउ, विच वॉज लॉन्ग ड्यू, दे आर फॉर्मिंग द ओन यूरोपियन अलायंस।
1: Okay.
0: Though they have not advertised it too much, but I think that's what they are, from the information जो मुझे मिल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि ये लोग अब आपस में मिलकर अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि they are afraid कि अब रशिया भी यूक्रेन में गया है, then they might go to Poland, you see, because they're right at the border. So they have to make themselves stronger. रशिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बट पॉपुलेशन उतना नहीं है जितना बड़ा कंट्री है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट जो साइबेरिया एंड ऑल दैट, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर इनहैबिटेबल, दे कांट, पीपल कांट लिव देयर। सो इट्स वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वेयर टेम्परेचर गोज डाउन टू -70°C। तो यू कैन इमेजिन, वहाँ पर लोग जब बाहर निकलते हैं तो जैसे कि एवरी विंटर में एवरी 10 मिनट्स और सो दे हैव टू रश इन साइड बैक इन टू वार्म देयर सेल्फ, अदरवाइज दे लूज देयर लिम्स फिंगर्स एंड ऑल दैट।
1: वाओ,
0: इट्स सो कोल्ड। या सो वेरी फैसिनेटिंग प्लेस, पीपल स्टिल लिव देयर।
1: सो ऑल द
0: समर इज हार्डली,
1: all the pipes and everything must be frozen, isn't it?
0: All the pipes are never underground, because underground never ever thaws, it's always frozen. That's why they have ice for thousands of years. To jab general warming hone lagta hai, those there's a term for that particular space jo wahan par ice ho jata hai. I'm just sort of abhi bhai bhula hu, lekin wo ice jab melt hone lagta hai, this creates a big problem. Kuch jagah par hua hai jahan par they have recovered bodies, they were 2000 years old.
1: Wow.
0: Because they are buried in this ice. So wahan par jo pipes wagera hote hain, underground nahi hote hain, they go overground. You might think it'll freeze quicker, but no, underground is solid ice. So and it never thaws. रिमेंबर, हमने आपसे कहा था व्हाट 25.5 डिग्री जो टिल्ट है ना, बिकॉज दिस इज राइट नियर द नॉर्थ पोल, सो दैट टिल्ट इज फर्दर अवे फ्रॉम द सन, राइट? सो दैट्स व्हाई दे हैव वेरी शॉर्ट वेदर। और हम जो लोग जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं, वो बीचों बीच में रहता है, वेरी वेरी लिटल, you know, you see the weather pattern change. It's pretty much the same throughout the year, because it is at a certain axis, jahan par axis mein 10 hota hai. So it is always the same almost. Lekin the further north and south you go, the more weather is more prevalent, you know, the four seasons. Lekin north Russia probably doesn't see the all three seasons, four seasons. They probably see two seasons. Because wahan par agar sama hai to bahut kam, aur sometimes the sunlight is only for sama ke samay wahan raat nahi hota. Raat ke samay wahan din nahi hota hai.
1: That must be
0: only few hours.
1: Must be quite depressing, isn't it? Like if you don't see the sun.
0: But they're born and brought up there. Well, ऐसे कहा गया है कि जिस देश में जहाँ पर सूरज नहीं देखने को मिलता है, and that's why more people commit suicide in the winter time, because सूरज ना देखने से people mentally are put off.
1: Yeah.
0: And a lot of suicide happens that time. But ye log kya karte hain wahan par, just to fool the system, they have lights all the time on to make it look like summer a little bit.
1: Wow.
0: Interesting, isn't it?
1: Very, very, very interesting. Yep.
0: Yeah.
1: Wow.
0: और हमारा यहाँ पर देखो 10-12 डिग्री में हाथ पैर सब कांपने लगता है जी. तो दे chose to live that way.
1: Hey?
0: Yeah. Yeah. Yeah, different lifestyle. Yeah. Okay, चलिए enough of that knowledge, आगे बढ़ते हैं.
1: Okay, play one of our favorite songs. Okay, here we go.

0: Okay, I know. All right. एक गाना मैं भी तैयार करके रखा हूँ.
1: ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स हियर इट.
0: ओके. ऑलराइट, हियर वी गो.
1: ओके.
0: होपफुली इट विल प्ले ऑलराइट.
1: यप.

तो चले, कभी नया तो कभी पुराना, है कि नहीं? और 8:18 हो गए हैं दोस्तों, तो चले अगला जो गीत है, एक पुराना गीत है अभी तक, और उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा. ठीक है, चलो सुनते हैं.

0: जी हाँ दोस्तों, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया ना करो। देखिए वार्निंग है, एक बड़ा प्लेफुल रोमांटिक वार्निंग रहा है फ्रॉम वन लवर टू दी अदर। ये भी गान में बोल रहे हैं ना, है सजेस्टिंग दैट द ब्यूटी ऑफ द गार्डन एंड द एक्साइटमेंट ऑफ लव आर बेस्ट एंजॉय टुगेदर एंड नॉट अलोन। हाँ चलिए, एक बहुत ही एलिगेंट बॉलीवुड सॉन्ग अभी आपने सुना, और इसमें थोड़ा रोमांस है, थोड़ा टीजिंग है, थोड़ा ये सब है इसमें। और इस गीत को गाया था लता जी और रफ़ी साहब ने, और म्यूज़िक को दिया था नौशाद, शकील का लिखा हुआ, बदायूनी का लिखा हुआ। तो चलिए, ऐसे कुछ गीत है जो हम सुनते तो अच्छा लगता है ना, चिढ़ाने कुछ ऐसा इसमें चल रहा है कुछ।
1: ब्यूटिफुल
0: ओके
1: सॉन्ग.
0: जी हाँ, और वो टाइम इज क्रीपिंग अप वेरी क्विकली।
1: ओह, इट्स 8:37.
0: या
1: आफ्टर ऑल द
0: सो
1: हिकअप्स ऑफ द मॉर्निंग,
0: या
1: सडनली द टाइम्स गो पास्ट अस बाय. ऑलराइट,
0: मेबी दिस अ गुड आइडिया, टाइम फ्लाइज। या
1: ए
0: नो नो इट्स ओके, व्हाट एल्स यू गॉट प्लेइंग?

0: Okay, I didn't know you liked the song so much. Okay, I wonder how many people noticed.
1: Okay.
0: चलो अच्छा चलो अगला जो गीत है दोस्तों ये गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है आदि बर्मन के संगीत है और सुनते हैं

0: और अब मेरे ओर से आखिरी गाना है और आई डोंट नो शायद अमिता आप भी पसंद करोगे इस गीत को.
1: Okay.
0: मैं जानता हूँ दोस्तों आप सबको ही बहुत पसंद करेंगे. ठीक है तो चलो सुनवा देता हूँ. Here we go.

0: के तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, अभी आपने सुना दोस्तों। और अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया है, लिटरली चलने का वक्त, मुझे यहाँ से मूव करना है टू द नेक्स्ट टाउन।
1: ऑलराइट,
0: यप, आई हैव टू गो।
1: द लास्ट सॉन्ग, वी गॉट 3 minutes,
0: यू प्ले द लास्ट सॉन्ग एंड आई विल
1: से नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर।
0: यस, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।
1: वी विल सी यू ऑल टुमारो,
0: होपफुली,
1: डेफिनेटली।
0: Okay. Bye.

मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक ऐसी मॉर्निंग शो में जहां हम परफेक्ट होने का ढोंग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, हम तो जैसे हैं और वैसे ही सामने वाले को दिखाने में बिलीव करते हैं। तो भाई, शुरू हो चुका है आपका अपना सबसे रिलेटेबल शो इट हैपेंस, और इस शो के साथ आ गई है आपके साथ फिर से एक बार सताक्षी। जी हाँ, रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ आपके ब्रेकफास्ट शो को। तो चलिए, देर किस बात की है, सफर में आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया से गाने को सुनिए मेरे साथ। और वैसे भाई, शो की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने मुझे बताया नहीं है कि कैसे हैं आप। तो भाई, देर मत कीजिए, रेडियो प्रिस्वानी के फेसबुक पेज या वेबसाइट पर जाइए और शेयर कीजिए हमारे साथ कि कैसी है ये सुबह, कैसी है ये मॉर्निंग और कैसे हैं आप। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक बढ़िया से गाने के साथ। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर।

सो वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बानी पर सताक्षी के साथ हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बातें करेंगे, ढेर सारी करेंगे, बहुत सारी करेंगे, लेकिन अभी विश उन्हें कर दें जिनके लिए ये पल ये दिन हसीन और खास है। जी हाँ, अगर आप भी उनमें से हैं जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और भाई दुआ सताक्षी की आपके लिए बस इतनी सी है कि ख्याल रहे खुद का आपको हमेशा, और दूसरों के लिए जीते जीते कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद के लिए जीना भूल जाए। तो बस खुद का ख्याल रखिए, खुद के साथ जीते रहिए और मस्त रहिए। ईश्वर करे कि आपकी जिंदगी में कभी कोई गम कोई तकलीफ ना आए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी। सो शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, शादी की सालगिरह ये कुछ उसी तरह होती है जैसे हर साल आती है हमारी सालगिरह यानी कि बर्थडे। भाई कहते हैं कि इंसान का जन्म दूसरा होता है जब उसकी वेडिंग होती है, जब उसकी शादी होती है। सो आपकी जिंदगी में वो दिन आया है और आप उसे शिद्दत के साथ, खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस साथ के साथ एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार भी बनाए रखिए। इसी विश के साथ कि आप दोनों का साथ जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहे। विश करूंगी उन्हें भी जिनका आज बहुत ही खास और स्पेशल दिन होने वाला है। जी हाँ, तो आज के दिन से अगर आपको कुछ है उम्मीदें तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए फिलहाल आपके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू आपका अपना रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

पर सदाक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस जी आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ सुन रहे हैं। यू नो जब आज सुबह मेरा अलार्म बजा तो मैंने उसे 3 बार स्नूज किया, फिर जब उठी तो पैर सीधे बेड के कोने से जा टकराया। उस वक्त दिमाग में आया अरे यार आज का दिन ही खराब है, पर फिर मैंने खुद से कहा हे सताक्षी इट हैपेंस। जी यही तो लाइफ है। हम सब सोशल मीडिया पर सुबह सुबह परफेक्ट मॉर्निंग की फोटोग्राफ्स डालते हैं, परफेक्ट मॉर्निंग के स्टेटस डालते हैं। कोई योगा कर रहा है, कोई ग्रीन जूस पी रहा है, कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, पर असल जिंदगी में हम सब सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो चलिए आज के दिन कोई प्रेशर मत लीजिए और इस प्रेशर के साथ तो बिल्कुल भी दिन भर शुरू कीजिए कि आज मेरा दिन परफेक्ट है और आज सब कुछ मुझे परफेक्ट करना है। बस ये सोचिए कि आज मुझे खुश रहना है और अपनी कोशिश करनी है, और उसी कोशिश के नाम प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आप इट हैपेंस।

हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जी हाँ, हर दिन ना परफेक्ट नहीं होता है, हर दिन में ताजगी नहीं बनी रहती है। भाई जब भी सुबह की शुरुआत होती है तो कुछ चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, है ना, और आपको आप चाहे ना चाहे उन चैलेंजेस से होकर गुजरना है। ये बात अलग है कि कुछ उसको पार कर लेते हैं, कुछ इसी साइड रह जाते हैं, उसे पार नहीं कर पाते, और वो बन जाता है उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस। तो जो भी चैलेंजेस हैं उनको छोड़िए और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए। अपनी सुबह को अच्छा बनाइए, खुशनुमा बनाइए, परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागिए। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ इसी बात पर और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीजु ब्रिस्वानी 1701 AM पर। चलिए इट हैपेंस में हमारे और आपके साथ को और भी खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि अभी हम आ गए हैं उस मोड़ पे जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हमारे साथ होते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं गानों की हैट्रिक की। तो आइए गानों की हैट्रिक का पहला ट्रैक सुनते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

रेडियो प्रसारणी पर गानों की हैट्रिक सुन रहे हैं आप सदाक्षी के साथ। आइए गानों की हैट्रिक में आज के अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसारणी।

गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप इसी सफर को सुन रहे हैं और गानों की हैट्रिक में आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। अभी स्टे ट्यून्ड, आपका अपना रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।